पनि यो प्रभातीय घडीमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ भक्ति भावले ओतप्रोत प्रस्तुति उपासना। उपासना अन्तर्गत आज हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौ भक्ति संगीत निरन्तर।

0: स्टेशन्स,
1: प्रमुख डिपार्टमेन्ट स्टोर्स, मार्ट र मिनी मार्टमा पनि उपलब्ध छ।
2: बाबा, मलाई आज स्कुल जाने मन छैन, आज जाँदिन नि है।
3: लौ किन नि, के भयो, सन्चो भएन?

0: प्रमुख डिपार्टमेंट स्टोर मार्ट र मिनी मार्ट मा पनि उपलब्ध छ।
1: बाबा मलाई आज स्कुल जाने मन छैन, आज जाँदिन नि है।
2: लो किन नि, के भयो सन्चो भएन?

कथा प्रतिबिम्ब हो हर घटना परिघटनाको, कथा परिदृश्य हो हर रीति कुरीतिको, कथा परिकल्पना हो हर सचेतन मस्तिष्क।

प्रतिबिम्ब हो हर घटना परिघटनाको, कथा परिदृश्य हो हर रीति कुरीतिको, कथा परिकल्पना हो हर सचेतन मस्तिष्क।